धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
0: माता रामो मत्पिता रामचंद्रः।

0: స్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
1: సర్వస్వమే రామచంద్రోదయాలుర్
0: నాణ్యం జానే నైవ జానేన జానే
1: నాణ్యం జానే నైవ జానేన జానే.
2: స్తోత్ర పఠనం అభవత్. आप जरूर बताइए स्तोत्र पठनम आपको कैसा लगता है. आज की कथा आपके समझ में आई होगी. वो कथा आपने दो बार सुनी, एक बार वर्तमान काल में और एक बार भूतकाल में. उसके बाद हमने अच्छे मित्र के लक्षण भी सुने. अच्छे मित्र के लक्षण बताने वाला सुभाषित सुना. अपना भाषा पठन बहुत अच्छा चल रहा है. क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? जरूर जरूर बताइए. इदानीं शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति. दुर्जनः सज्जनो भूयात्.

0: ನಮಸ್ಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇದು ಕೆಎಲ್ಇ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:15 ಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 8:15 ದಿಂದ 8:30 ದವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:30 ದಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಧುರ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9:00 ದಿಂದ 9:30 ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 9:30 ದಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 10:00 ದಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 12:00 ದಿಂದ 12:30 ಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮಿಶ್ರ ಮಾಧುರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 12:30 ದಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಗೀತ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1:00 ದಿಂದ 1:30 ಕ್ಕೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಚಿತ್ರಮಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು, 1:30 ದಿಂದ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವರಝೇಂಕಾರ ಮರಾಠಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2:00 ದಿಂದ 2:15 ಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 2:15 ದಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 4:00 ದಿಂದ 4:30 ಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 4:30 ದಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5:00 ದಿಂದ 7:35 ಕ್ಕೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, 7:35 ದಿಂದ 7:45 ಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 7:45 ದಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂನಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. 8:00 ದಿಂದ 8:15 ಕ್ಕೆ ಕೆಎಲ್ಇ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 8:15 ದಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೆಲ್ಲುಸಿರೆ ಸವಿಗಾನ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
1: वेणुध्वनि 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज.
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं. अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया. समाचार कक्ष से श्याम शर्मा.
3: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है.
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
3: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है. झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है. विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं. वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं. नंबर है 9779851316807 और 9779813261. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं.
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ सम्पन्न होगी।
6: सत्तावन दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
7: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
3: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
8: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
3: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितम्बर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
9: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
10: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
9: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
12: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब ₹63 प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षा बंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: 94.4 FM वेणुधुनि के एल ई कंसो पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनि 90.4 FM के एल ई कंसो।
13: ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರು KLE ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಸವನಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಓಪಿಡಿ ಸೇವೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KLE ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಬಸವನಕುರ್ಚಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448141503 ಹಾಗೂ 8123871607.
14: For the first time in Hubballi, a golden opportunity for new entrepreneurs, young entrepreneurs, startup founders and aspiring self-employed individuals. Turn your ideas into income and build a strong foundation for your dream business by attending this one-day skill development workshop, Empower 365, from idea to company, on Sunday, 18th of October 2026. This workshop will help you transform your business ideas into successful ventures, develop essential entrepreneurial and business skills, learn practical strategies for starting and growing a profitable business, gain insights and inspiration from experienced entrepreneurs, take the first step towards becoming a successful and profitable entrepreneur. Register today. Contact 95135 1966. Geekona Success Strategy.

नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस पर एक खास कार्यक्रम। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, ज्ञान और परंपरा की अमूल्य धरोहर है। इसी विषय पर आज हमारे साथ है KLS गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेलगावी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर विद्याधीश पांडुरंगी और उनके साथ है VTO की MBA छात्रा दानेश्वरी पुजारी। तो आइए सुनते हैं संस्कृत भाषा के महत्व और उसकी विरासत पर एक विशेष बातचीत।

ये था हमारा विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस पर एक विशेष बातचीत हमने सुनी। हमारे साथ थे प्रोफेसर विद्याधीश पांडुरंगी जो KLS गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेलगावी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत है, और उनके साथ थी VTO की MBA छात्रा दानेश्वरी पुजारी। संस्कृत हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारे ज्ञान की समृद्ध विरासत है। आइए इसे जाने, सीखे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ मैं मनीषा आपसे विदा लेती हूं। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE गणेशपुर। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप ट्यून है वेणुथोनी 90.4 एफएम के एलई कनसू पे। मैं हूँ आपके साथ मनीषा। आज एक विशेष प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं, और जिसमें हम मिलेंगे ज्योति कत्ती जी को। जी हाँ, इनका नाम सुनने के बाद में आपको अंदाजा तो आया ही होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ज्योति कत्ती जी को अभी बॉलीवुड मिस्टर एंड मिसेस का खिताब मिल चुका है, उसकी वो विनर रह चुकी है। ये प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था और इसके बारे में हम उन्हीं से बात करके आगे की जानकारी लेंगे। तो चलिए मिलते हैं ज्योति कत्ती जी से। मैडम, वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने मिस्टर एंड मिसेस बॉलीवुड का खिताब अपने नाम पे कर लिया है, तो उसके बारे में आप हमारे लिसनर को क्या बताएंगे?
1: जब वो पेज पे आ रहा था तब मेरी बेटी ने देखा, फिर वो स्क्रॉल कर रही थी तो उसने मुझे पूछा कि तुझे यहाँ पे ज्वाइन होना है। तो उसी ने पेज एंटर की, रजिस्ट्रेशन की, फिर उसके बाद मुझे बताया कि मैंने बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी जाना नहीं है क्योंकि तेरा एग्जाम से और तुम लोगों का स्कूल कॉलेजिंग छोड़ के मुझे जाना नहीं है इसे।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद मेरी बेटी ने जबरदस्ती एडिट की, फिर उसके बाद हो गई जर्नी स्टार्ट। 1 मंथ बैक ही ये हुआ था। 1 मंथ तक ये जो ग्रूमिंग चल रहा था दोनों बेटियां, आई हैव टू डॉटर्स।
0: ओके।
1: सो छोटी बेटी ऐसे ज्यादातर मॉडलिंग का ये करती है। हाँ, तो फिर उसी ने स्टार्ट किया मेरा ग्रूमिंग 1 मंथ बिफोर। तो चलता रहा, ट्रेनिंग भी दी घर में ही मुझे।
0: अच्छा।
1: फिर हो गया ऐसे डे जब नज़दीक आता था फिर चली, फिर वहाँ का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद द फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे एंड थर्ड डे पता चला कि उसमें क्या होता है। इट वॉज 6 डेज ग्रूमिंग सेशन। फिर उसके बाद ग्रैंड फिनाले था।
0: अच्छा।
1: तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट 2 डेज जैसे मैं कंफ्यूज थी, यानी अलग जगह और अलग एक्सपीरियंस।
0: करेक्ट।
1: तो उसके बाद ना तो चलता रहा, फिर अच्छा लगने लगा, फिर ऐसे ही वहाँ का कुछ सीखने मिला, कुछ सिखाने मिला। आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर।
0: ओके।
1: तो मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, फिर मेरा भी कुछ सेशंस वहाँ पे चले, फिर मैं भी थोड़ा सा ज्ञान देने लगी। फिर उसके बाद उनका भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्या है अलग, यानी कम्प्लीटली ऐसे यानी अलग ही जगह था ना मेरे लिए वो।
0: तो टोटली न्यू एक्सपीरियंस।
1: हाँ, न्यू एक्सपीरियंस। तो अच्छा हुआ। फिर उसके बाद जो फिनाले राउंड आया, 3 राउंड से हो रहते हैं उसमें, फिर उसमें फिनाले राउंड आया, उसमें से मैं जीत के आई। तो ये मेरा जर्नी था फर्स्ट से लास्ट तक।
0: ये आपका फर्स्ट टाइम था?
1: या हाँ जी।
0: ग्रेट। फिर फर्स्ट टाइम ही
1: मैं मॉडलिंग में भी नहीं हूँ।
0: ओके।
1: कोई भी एक्सपीरियंस नहीं इसके बारे में। हाँ, मैं ड्रेसअप अच्छे से करती हूँ, इतना ही था। ठीक है, मुझे बहुत पहले का वो सपना था जब कॉलेज में थी, स्कूलिंग में थी, अच्छा ये लोग मॉडलिंग करते हैं, तो रैंप वक्त मुझे भी वहाँ पे उस मंच पे जाना, सब रिस्ट्रिक्शंस थे तो जा नहीं पाई थी। शादी के 22 ईयर्स बाद मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करी हूँ।
0: सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है एक्चुअली, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम ही इतनी बड़ी अचीवमेंट करना है, इट्स ग्रेट। तो ये सभी जो कंपटीशन हुआ वो दिल्ली में हुआ और ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
1: yes.
0: इसके पहले कभी आपने मॉडलिंग नहीं किया, कभी ऐसे कुछ कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया।
1: Nothing.
0: और फर्स्ट टाइम बाहर जाके हिस्सा लिया और आप जीत भी गई।
1: एक तो मेरा स्टेज करेज था, आई लव डांसिंग, मेरे डांस परफॉर्मेंस भी हुए हैं बहुत सारे स्टेज पे, जैसे लेडीज क्लब्स और हमारा लिंगाई स्टेज पे वगैरह हुआ है, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया है। आई एम अ लावनी डांसर।
0: अरे वाह।
1: आई एम सिंगर टू। तो ये था ऐसे, इतना स्टेज करेज था। तो ये सब कुछ वो वाला तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। इट वाज नॉर्मल, वहाँ पे नहीं लगा कि वो लोग अलग हैं और हम लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, कुछ हमसे यानी डिफरेंस लगेंगे ऐसा कुछ नहीं था। इससे भी अच्छा वहाँ पे ट्रीट हुआ, आई मीन जहाँ हम यहाँ पे नॉर्मल रहते हैं वहाँ पे हमें महारानी जैसा ट्रीट मिला एक्चुअली।
0: Great.
1: बहुत अच्छे से मिला।
0: क्या क्या नई बातें आपको सीखने मिली वहाँ पे?
1: वहाँ पे तो एक तो ये मॉडलिंग का कनेक्शन ही रहते हैं, फिर अच्छे से फैशन डिजाइनिंग का।
0: ओके।
1: फिर उसके बाद सम सेशंस चलते थे, यानी सब कुछ इन्वॉल्वमेंट था उसमें।
0: अच्छा,
1: तो एक ही ऐसे मॉडलिंग करना ऐसा नहीं था। जैसे सेशंस थे, यानी स्पिरिचुअल सेशंस थे, फिर उसके बाद कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट, आई मीन सभी ऐसे ट्रेन करते थे हमें।
0: अच्छा,
1: तो ये सब कुछ रहता था, अच्छा था।
0: तो फाइनल तक जाते वक्त मतलब आपको कुछ ऐसे रहता है ना मन में बेचैनी कि पता नहीं क्या होगा और कल लास्ट है तो वो टाइम पे क्या होगा, ऐसे कुछ फीलिंग्स थे?
1: कभी नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: मैं पहले दिन जैसी थी वैसे लास्ट डे तक मैं एनी आई एम काउंसलर।
0: ओके।
1: तो मैं लोगों को सपोर्ट करती थी, कभी डरना नहीं, हारे या जीते हम अपने लिए जीते ही है ऐसे। तो मैं लोगों को ऐसे जो डरते थे ऐसे मेरे साथ कुछ शेयर करते थे, उदास रहते थे, मैं उन्हें ऐसे ट्रीट करती थी कि वहाँ उसमें से निकाले वो। फिर उसके बाद ग्रैंड फिनाले आया, तभी मुझे कुछ नहीं लगा कि मैं आऊंगी, ऐसा कुछ फीलिंग्स ही नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: फिर जैसे एक्चुअली ये मिस्टर एंड मिसेस कैटेगरी था।
0: ओके।
1: नॉट ओनली मिसेस, फिर मिसेस कैटेगरी में थे हम लोग, थे 12 टू 13 लोग थे, तो फिनाल में पहुंचे थे। फिर उसके बाद जाने लगे एक एक के बाद ऐसे, जैसे टॉप 5 का नाम अनाउंसमेंट होने लगा, फिर एक ही चरण में चेयर अप कर रही थी पीछे रख के, फिर आखिर में मेरा नाम है, मैं द ओनिंग दिस कंपनी इज यश अहलावत। उन लोगों के हाथ में ही रहता, उन्हें ये था ना कि मैं ही आऊंगी, तो वो स्माइल देने लगे, मुझे नहीं लगा था कि मैं ही आऊंगी ऐसे। तो जैसे ही मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, मैं ऐसे नॉर्मल चल रही हूँ, लोग ऐसे खुशी हो के चलो, मैं ऐसे नॉर्मल चल रही हूँ, फिर वहाँ जाके सर इतना भारी चीज मेरे सर पे क्यों डाला आपने मेरा सवाल। अच्छा। जब चंकी पांडे जी ने भी मुझे अप्रिशिएट किए, क्योंकि जैसे मेरी जर्नी था वो ऑब्जर्वेशन में था, जैसे ऑर्गेनाइजर्स और सभी वहाँ पे जो रहते हैं ना ऑब्जर्वेशंस में रहते हैं, तो इस जो 6 डेज का जर्नी वो ऑब्जर्वेशन करके हमें फाइनल में चुनते हैं।
0: ओके।
1: तो ऐसा रहता है। फिर उसके बाद चंकी पांडे जी ने भी मुझे जो क्राउन पहनाते वक्त मुझे बोला कि घर का सब कुछ संभाल के यहाँ पे इस मंच पे आके आप क्राउन पहन रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे बोले मुझे।
0: अरे वाह।
1: संगीता बिजलानी भी बहुत ऐसे ये किया, बहुत अच्छा लगा सच में।
0: रियली हमें भी सुनते वक्त इतनी खुशी हो रही जितनी कि तब आपको हुई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट टाइम था आपका। आप हाउसवाइफ हो, मतलब योगा इंस्ट्रक्टर हो, बट वो साइड में रहता है, बट मेजर पार्ट इज हाउसवाइफ। उसके साथ साथ आपने इतना बड़ा भी अपने नाम पे एक किताब किया है, जिसके लिए हम सब भी बहुत खुश है। जैसे आपने बताया कि 6 डेज का ये प्रोग्राम था सभी
1: जी,
0: तो जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हाँ ये क्या, मतलब एक फैशन शो चला होगा, उसमें रैंप वॉक हुआ होगा और सिलेक्शन हुआ होगा, तो इतना तो आसान नहीं रहता है।
1: कभी नहीं, इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन।
0: करेक्ट।
1: और मुझे ऐसे कभी भी नहीं, जैसे मैं घर में रहती हूँ, आई मीन मैं अपने लोगों के साथ कनेक्शंस में रहती हूँ, वैसे ही मैं वहाँ पे थी हर लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि वो ऊंचा है यहाँ पे, हम लोग वहाँ पे सीखने का, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल भी लेवल पे ही हम लोग ट्रीट करते थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा था वो भी।
0: तो वहाँ पे जो आपके अलग अलग राउंड्स हो रहे थे, वहाँ पे एग्जैक्टली मतलब क्या पूछते थे?
1: एक्चुअली 3 राउंड्स उन्होंने जब चार्ट में वो लिखी दिए थे, 3 राउंड्स रहता है। एक तो रैंप वॉक का रहता है, वॉक का, तो ये भी मेरे लिए नया था, मैंने कभी ऐसे स्टाइल से नहीं चली थी, हील्स डाल के, वो भी 5 inches हील्स।
0: ओह माय गॉड।
1: देन फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स राउंड रहता है, उससे पहले टैलेंट राउंड।
0: अच्छा।
1: द फर्स्ट इज टैलेंट, देन सेकेंड इज रैम्प वॉक, देन थर्ड इज क्वेश्चन आंसर राउंड। टैलेंट राउंड में मैंने तो डांस करी माधुरी दीक्षित का।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक्सप्रेशन क्वीन, तो वो भी अच्छा था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किए। देन सेकेंड राउंड इज रैम्प वॉक, वॉक का तो मेरा परफेक्ट था।
0: अरे वाह।
1: तो थर्ड राउंड क्वेश्चन आंसर राउंड, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या मंत्रा यूज करते हैं, उसमें भी मैंने पॉजिटिवली आंसर दी। इट वॉज सुपर्ब, कभी डर नहीं लगा मुझे। ऐसे ही यहाँ से जाते वक्त डर लग रहा था एक्चुअली.
0: अच्छा.
1: अरे नहीं यार, मुझे नहीं जाना है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या होगा, आई डोंट नो.
0: आपने जाने से पहले क्या क्या तैयारी की थी? जैसे आपने शुरू में बताया कि आपने सभी तैयारी आपने घर पे ही की, आपकी बेटियों की बड़ी सहायता मिली, तो उसको लेके और कुछ प्रिपरेशन किया था आपने?
1: कुछ नहीं, वो लोग मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड जो रहते हैं ना, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, वही ट्रेन कर रहे थे. मैंने बोला वहाँ का क्वेश्चंस देके मैं बोलूंगी नहीं अम्मा, ऐसे ही करना है तुझे. तो फिर वाक भी सिखाते थे, लेकिन घर का कैसे रहते वैसे वो नॉर्मल रहते तो दोनों बेटियां भी बहुत सपोर्टिव है, तो उन्हीं की वजह से मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ, अभी जी रही हूँ, अभी ओपन हो रही हूँ.
0: बहुत टाइम गया, ऐसे नहीं लगता आपको?
1: नहीं, जब हम जीना सीखते हैं ना तभी से हमारा टाइम स्टार्ट होता है.
0: ग्रेट. तो ये तो हो गया कि आपकी जो अभी अचीवमेंट्स हुए उसके बारे में, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं. और क्या क्या हॉबीज है आपके?
1: हम बेसिकली फ्रॉम बेलद बागेवाड़ी.
0: ओके.
1: कतीस. तो बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, 4 इयर्स हो गए.
0: अच्छा.
1: तो 2 बेटियाँ हैं. फिर मेरी हॉबीज है सिंगिंग, डांसिंग एंड राइटिंग. आई एम अ पोएट, पोएटेस. देन मेरा बुक भी रेडी होने वाला है.
0: अरे वाह.
1: तो चल रहा है वो भी.
0: तो ये सभी आप एक साथ कैसे मैनेज कर लेती है? मतलब डांसिंग की भी आपको हॉबी है, सिंगिंग की भी है, ऑब्वियसली अभी एक गाना
1: प्रैक्टिस,
0: थोड़ा सा
1: प्रैक्टिस की वजह से घर में जब भी फ्री टाइम मिलता है करती हूँ, नहीं तो कोरियोग्राफी के लिए जाती हूँ.
0: हाँ.
1: फिर नहीं तो इधर मेरा सिस्टम्स है घर में सिंगिंग के लिए.
0: okay.
1: वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ. फादर इज आल्सो सिंगर, तो उन्हीं से मुझे ये मिला है कला. फिर राइटिंग का तो ये तो अभी 6-7 ईयर से मैं मेरा स्टार्ट हुआ है. तो अपने आप ऐसे बनने लगा था, ऐसे कुछ शायरीज बनने लगे थे, तो कुछ थॉट्स आने लगे थे, वो झट से मैं लिख लेती थी. तो इसी से वो मैं मेरा लिखना स्टार्ट हुआ जर्नी.
0: ग्रेट. आपका एजुकेशन कहाँ कंप्लीट हुआ?
1: निपाणी. हाँ, निपाणी माजी माहिर.
0: अच्छा.
1: देन निपाणी में कंप्लीट हुआ मेरा कॉलेजिंग, स्कूलिंग कॉलेजिंग. तो बेलद बागेवाड़ी में मैरिड. देन
0: बेलगम में सेटल.
1: सेटल.
0: आप खुद अभी एक सिंगर है और डांस भी कर लेती है. तो एक 4 लाइनें हमारे वेणु धोनी के लिसनर के लिए हो जाए.
1: रुपेरी वाळुत माड्यांच्या बनात येना, रुपेरी वाळुत.

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312473777.
1: जैसे आपने बोला कि आपकी बेटियों ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाई, तो वो लोग क्या करते हैं अभी?
2: मेरी बड़ी बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फाइनल है, देन छोटी वाली अभी 10th है, उसका फैशन का इंटरेस्ट है, आई मीन फैशन डिजाइनिंग का.
1: अच्छा,
2: तो इसका पायलट का अभी 2 इस पे पार हो चुकी है, आई मीन मेडिकल का और थियरी में. तो अभी फाइनल है अपना ट्रेनिंग.
1: ग्रेट.
2: बड़ी वाले का अभी पुणे के लिए गई है, कुछ ट्रेनिंग्स रहे, तो हमारे साथ ही रहती वो.
1: अच्छा, जब उन दोनों को पता चला कि हाँ हमारी मम्मी विन हो गई तो क्या?
2: एक्चुअली ये अनाउंसमेंट हुआ रात को 12 बजे.
1: अच्छा.
2: खत्म, आई मीन जब फाइनल अनाउंसमेंट हुआ रात को 12 बजे.
1: ओके.
2: जब 1st अक्टूबर, देन वो लोग ऐसे ही वेट करते करते मुझे कॉल्स भी किए थे, उन लोगों का कॉल भी आया था क्योंकि फोन तो अलाउ नहीं था वहाँ पे. तो कॉल करते करते थक चुके सो गए थे. फिर जब मैंने कॉल किया, रिसीव किया, फिर उसके बाद गेस व्हाट, आई एम द विनर. हाँ, व्हाट? उन लोग ऐसे इतना से, फिर वीडियो कॉल में कॉल्स बातचीत होने लगे, सभी लोगों ने खुश हुए, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड. फिर मेरा भाई का भी कॉल आया. मेरा भाई भी बहुत सपोर्टिव है मुझे.
1: अरे वाह.
2: बहुत सपोर्ट करता है हर इस पे.
1: अरे वाह.
2: तो उसके भी ऐसे ही बहुत खुश हुए वो लोग.
1: तो उधर आप अकेली गई थी या साथ में?
2: हाँ, अकेली गई थी मैं.
1: यानी कि सब फैमिली मेंबर्स का आपको काफी सपोर्ट?
2: हाँ, सपोर्ट है.
1: अच्छा, तो डांस वगैरह भी अच्छा आप कर लेती है, लावणी आप बहुत अच्छा कर लेती है, तो उसके कुछ क्लासेस वगैरह लेती है या फिर?
2: नहीं, मैंने घर में ही सीखा है. तो जैसे वर्कशॉप था, रहते थे तब मैं अटेंड हुई थी, लेकिन कम्प्लीटली ऐसे लावणी डांस मैंने घर में ही सीखा है.
1: अरे वाह. मतलब हमारे जैसे काफी महिलाएं हैं जिनके पास अनेक कलाएं रहती हैं, बट वो कभी बाहर नहीं आ पाती या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहते.
2: और ऐसे महिलाओं को भी मैंने बाहर बहुत निकाले हैं. उन्हें ऐसे काउंसल करके ना, तुझे उस घर से बाहर निकाल के कुछ तेरा भी ऐसे एक्सपोज करना है, तो ऐसे निकाला है मैंने.
1: तो ऐसी महिलाओं के लिए हमारे वेणु धोनी के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगी?
2: कुछ नहीं, अभी कैसा है ना कि एज इज नो मैटर. जब एज की जा रही, हमारी एज ऐसे बढ़ती जा रही है, तो अभी क्या करना है? नहीं, अभी जीना है आप लोगों को. जो हम पीछे नहीं कर पाए, अभी जाके वो एक एक खूबियाँ बाहर निकालना है. तो वैसे तो जब जब छोटे थे तब करते थे, वो रहता था, लेकिन आफ्टर मैरिज ना, कि सभी लोग घर में ही रहते हैं ऑलमोस्ट. बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम जैसे महिलाओं को बस आज में जीना है, पास्ट का लेके चलना है, फ्यूचर को भी रखना है, और आज में जीना है और खुल के जीना है बस.
1: एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनमें बहुत सारी खूबियां होती है, बट वो फैमिली को लेके, फैमिली को प्रायोरिटी दे के, वो अपने आप को थोड़ा सा भूल जाती है. तो उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है. और ऐसे जो हम इंटरव्यूज लेते हैं वो एक प्रेरणा देती है उनको कि हम भी ऐसा कुछ करें, जो हमारे पास है उसको थोड़ा सा बाहर लाए, ऐसी एक प्रेरणा उनको मिलेगी, यही हमारा उद्देश्य रहता है. तो उसके साथ साथ अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग कुछ है क्या आगे के?
2: फर्स्ट प्रायोरिटी इज फैमिली. फ्यूचर प्लानिंग का ये जो क्राउनिंग रहता है 1 ईयर तक रहता है, उनके जो मीटिंग्स रहते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, फिर सम कॉन्ट्रैक्टिंग रहता है.
1: अच्छा.
2: तो उस वजह से शायद हो सकता है इस फैमिली को पकड़ के ही चलना है जहाँ भी जाना है.
1: मीन्स ये बदलाव थोड़ा सा आपके आ गया है अभी, बट फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ेंगे. वेरी नाइस. फिर एक बार वेणु धोनी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, कांग्रेचुलेशंस, और आगे आप ऐसे बढ़ते रहे. आज के लिए थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच.
1: आज का विशेष प्रोग्राम जो आपके लिए वेणु धोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे, जिसमें हमने सुना ज्योति कत्ती जी की जर्नी, जो कि बॉलीवुड मिस्टर एंड मिसेस की विजेता रह चुकी है। उनके बारे में हम सुन रहे थे। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर आएगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।
3: नमस्कार, मी शर्मिष्ठा राऊत, तुम्ही ऐकत आहात वेणू ध्वनी 90.4। आजच्या आपल्या या सगळ्या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये

आयान मकोशी, आई एम डूइंग MLT। तो बहन के लिए कहना चाहता हूँ कि बहन माँ जैसी होती है और हमारा बहुत ख्याल रखती है, और जब मम्मी घर में नहीं रहती है सब हमारे काम वगैरह बहन ही करती है। बहन होना बहुत ज़रूरी है, और जब हम ग्रेटफुल हैं कि हमारे बहन है, जिसकी बहन नहीं होती वो सोचता है कि अपनी भी बहन होना चाहिए।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी।

कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

सोनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूरी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सितार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप

गया ये गीत तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।